रंजन हर पुरख निरंजन अगम अगम अपारा सब त्यावै सब त्यावै तुद जी और सच्चे सिर जनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दा तारा हर त्यावो संतो जी सब दुख विसारन हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज बिडाना तू आपे दाता आपे भुगता जी आऊं तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाना जो सेवै जो सेवै तुद जी जन नानक तिन कुरबाना हर त्यावै हर त्यावै तुद जी से जन जुग मैं सुखवासी से मुक्त पाए जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फासी जिन निरभाओ जिन हर निरभाओ त्याया जी तिन का भाओ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी और अनक अनेक अनंता तेरी अनक करें हर पूजा जी तप तापे जपे बेअंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमृत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख ब्रह्म पर करता जी तुद जेवड अवरना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू रहचल करता सोई तुद आपे पावै सोई वरतै जी तुम आपे करें सोई तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी तुदे आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सा का जानोई आसा महला चौथा तू क

तेरा खड़केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दे ले उबारी सार बठाउर मोह सहाय दोष्ट दोख ते ले हो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूरण सुबराता किलम के सकल देह को हरता दुष्ट दुखिन को शय करता श्री सज्ज पहे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ सकल्ला मन बांछत फल पा वैसो ही दुखनाद से ब्यापद कोई अड़ल सुने गुंग जो याहे सरसना पावई सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द भव निगड़नाद नर के रहा और जो याकी एक बार चौपाई गो कह चौपाई संबत सत्रह सहस पणिजाय आर्द सहस मुन तीन कह जाय भाद्रो सुधी अष्टमी रववारा तीर सदर्भ ग्रंथ सुधारा एत श्री चरित्रो बखयाने त्रया चरित्रे मंत्री पुभ संवादे चार सौ पांच चरित्र समाप्तम सत शुभम सत अभिजो दोहरा दाह जान कर दास पर की जय कृपा अपार आप हाथ दे राख मोहे मन क्रम बचन विचार चौपाई मैना ग्रशय प्रथम मनाऊ किशन बिशन गबूने त्याऊ कान सुने पहचान ना तिन सौ लिबलागी मोरी पगैन साओ

आज विचार अबना जान मुझे प्रत परिया चुन चुन शत्रु हमारे मरिया देख तेग जग में दो चल राखा मैं और ना दला तुम मम

राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भागत नेत सुरगवास रघुबर करा सगरी पुरी समेत चौपाई जो ये कथा सुने अर गावे दुख पाप ते निकट न आवे मिशन भगत की ये फल होई याद ब्याद शब सगे न कोई समत सत्रह सहस पचावन हाड़ बधि प्रथम सुख दावन तो प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परी लो देव सुधारा दोहरा नेत्र तुंके चरण तार सद्रव तीर तरंग श्री भगवत पूर्ण कियो रघुबर कथा प्रसंग दोहरा साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सगल पूर्ण कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया पाए गहे जब ते तुम रे तब ते को आंख तरे नहीं अन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सवै बहु भेद गए अमेक ना जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तुए बखान्यो दोहरा।

माया जग मोहिनी पाई कर्म सबे बेकारी सुन पंडित कर्मा कारी जित कर्म सुख उपजै पाई सो आत्म तत् बिचारी रहाओ शास्त वेद बके खड़ो पाई कर्म करो संसारी पाखंड मैल ना चूकई पाई पाई अंतर मैल बेकारी इन मित डूबी माकुरी पाई उंडी सिर कै पहारी दुर्मक घनी विगूती भाई दूजे पाए खुवाई बिन सतगुर नाम ना पाईए भाई बिन नामे भरम ना जाई सतगुर सेवे ता सुख पाए भाई आमन जान रहाई साच सहज गुरते उपजे भाई मन निर्मल साच समाई गुर सेवे सो बुझे भाई गुर बिन मग न पाई जिस अंतर लोभ के कर्म कमावे भाई कूड़ बोल विखाई पंडित दई विलोइए भाई विचो निकले तथ जल मथिए जल देखिए भाई ए जग ए हावथ गुरबिन परम बिगुचिए भाई कटकर देव अलख ए जग तागो सूत को भाई दैद सबादो माए बिन गुरु गांठ न छूटाई भाई थाके कर्म कमाए ए जग परम बुलाया भाई कहना किशु न जाए गुर मिले पाओ मन वसे भाई पै मरना सचलेख मजन दान चंगियाइया भाई दरगे नाम विशेख गुरे अंकस जिन नाम दृढ़ाया भाई मन वसया चूका भेख

सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो दे आगे।

जय जय प्रसाद हर प्रसुख बसै सुत प्रात मीत बनता संघसै जय प्रसाद विवे शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमला जय प्रसाद भोगे सब रसा सगल समग्री संग

सुर भंग कै पिंगल पर्वत पर भवन नहीं होत वापस गवन करतार करुणा में दीन बेनती करा नानक तुमरी कृपा तराय संग सहाय सो आवे ना चीत जो बैराही ताश्यो प्रीत बलवा के ग्रह भीतर बसे अंत गेल माया रंग रस दुड़कर माने मने प्रतीत काल न आवे मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ मिकार बह लोभ द्रो याहो जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लियो आपन कर कर्म तू ठाकुर तुम बह अरदास जियो बिन सब तेरी रास तू मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा मैं सूख नेरे कोई ना जाने तुमरा अंत उचे ते उचा भगवंत सगल समग्री तुमरा सूत्र धारी तुम ते हुए सो आ गया।

पथ जाए अष्टपदी दस वसूले बाछे पावे एक बस्त कार में खोट गवावे एक भी ना दे दस भी हरले तो मुड़ा कहो कहा करे जिस ठाकुर

सुख सह समावे। ऐसा प्रभु त्याग बरकत लागो, गुर प्रसाद नानक मन जागो। जय प्रसाद तू प्रगट संसार, प्रभु को मूला मनो विसार। जय प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूर्त ताको जाप। जय प्रसाद तेरे कार्ज पूरे, तसे जान मन सदा हजूरे।

ब्रह्मज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैला लागे जला। ब्रह्मज्ञानी के मनोय बरगा जैसे धर प्रयागास। ब्रह्मज्ञानी के मित्र सत्र समान। ब्रह्मज्ञानी के नाय अभिमान। ब्रह्मज्ञानी ऊंच से ऊंचा मन अपने

निर्मल निर्मल निर्मल तेरी वाणी खटखट सुनी सावन श्रवण बखयानी पवित्र पवित्र पवित्र प्रीत नाम जप नानक मन प्रीत सलोक संत सरण जो जन पर सो जन उदरण हार संत की निंदा नानका बहर बहर अवतार अष्टपति संत के दुख ने आर जागट है संत के दुख ने जमते नहीं छुटा है संत के दुख ने सुख सब जाए संत के दुख नरक में पाए संत के दुखन मातोए बलीन संत के दुखन सोगा सोबाते हीन संत के हते को रखे ना कोए संत के दुखन थान भ्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जय करे नानक संत संग नंदक भी तराय संत के दुखन दे मुख पवे संतन के दुखन काग जो लवे संतन के दुखन सर्व जोन पाए संत के दुखन त्रुद जोन कृपाए संतन के दुखन तृष्णा में जले संत को संत के दुखन सबको शलाए संत के दुखन ते सब जाए संत के दुखन नीच नीच आए संत दुखी का था को राहे नानक संत भावेता लय नानक संत भावेता वे बिगत पाहे संत का नंदक मात ताई संत का नंदक डिगन्ना पाई संत का नंदक मात आरा संत का नंदक परमेश्वर मारा संत का नंदक राज ते हीन संत का नंदक दुखियार दीन संत के नंदक हो सर्व रोग संत के नंदक हो सदा बिजोग संत के निंदा दोख में दोख नानक संत भावे था उसका भी होए मोख संत का

सब की तिस्का वो करने जो तिस बिंदु सर हुआ ना होग जब जन सदा सदा दिन रहनी सब ते उच निर्मल ए करनी कर कृपा को नाम दिया नानक सोजन निर्मल थिया जाके मन गुर की प्रतीत तिजन आवे हर प्रचीत भगत भगत सुनिए तेह लुए जाके हरदा एको हुए सच करनी सच ता की रहत सच हृदय सत मुख है साची दृढ़ साचा आकार सच वरते साचा पासार पार ब्रह्मजन सच कर जाता नानक सोजन सच समाता सलोक रूप नारेख ना रंग केश त्रिगुण ते प्रभिन्न तसहि बुझाए नानका जिस वै सो प्रसन्न अष्टपदी अविनाशी ब्रह्मन में राख मानु की तू प्रीत्याग तसे परा नाही कुछ गोए

अगोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वय सुखदायी ताकी कीमत गण न पाय। अनक भगत बंदन करे चरण कमल हृदय सिमरे सदबल हरि सदगुर अपने नानु।

हर सौ कहो किसे व्यापत, तब हर सौ कहो किसे व्यापत, जब अपने आप आपार ब्रह्म तब मोह कांग सुबत ब्रह्म, अपन खेला प्रतीजा दान करने हार ना दूजा, जब हो तो प्रभु केवल तनी, तब बांध मुक्त कहो किसको गनी, जब एक हर अगम अपार, तब नर्क सुर कहो कौन अवतार, जब निर्गुण ब्रह्म सह सुभाए, तब शिव शगत कहो कित ठाए, जब आपे आप अपनी ज्योतर तब कमन ने डर कमन कत डराए, अपन चलता आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार, अविनाशी सुख आपन आसंत है, जन्म मरण कहो कहा विनाशन, जब पूर्ण करता अपन सोए, तब जमकी त्रास कहो कि सोए, जब अवगत अगोचर प्रभ एका, तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा, जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे, तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे, अपने आप आप ही चर्जा, नानक आपन रूप आप ही उपर जा, जय निर्मल पुरख पुरख बात होता, तय बिन मैल कहो क्या तोता,

राष्ट्रपति पूरे गुर का सोन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमरो गो बिंद मन अंतरिक उदरय चेंद आसन त्यागो तरंग समझना की तूर मन मंग आप छोड़ बेंती कर हो सा संग अगर सागर तरु

तमारी प्रभु की उस्तुत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सोत निधान सर्विचा तागी पूर्ण प्रधान पुर प्रगट सब लोहे सबते ऊज पाया स्थान बाहर न हो बै आम जान आर्तन खाट चलै जन सोए नानक जसे प्राप्त होए खेम सां दृढ़ नव निध बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध विद्या तब योग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार कमल प्रकाश सबके मत सक देवता सुंदर चतुर्थ का बेता समदर्शी तत् का बेता सुंदर चतुर्थ का बेता समदर्शी एक दृष्टिता ए फल तिस जन के मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एह निदान जपै मन कोए सब जुग में तागीगत होए गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत गए मन विश्राम।

जाए फिर देह गावे को जापैद सदूर गावे को वेख हादरा दूर कथना कथी न आवे तोट काथ काथ कथी कोटी कोट कोट देंदा दे लैंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाए हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक विग सेवे परवाहो।

तरे, नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंत्या गुण दे, तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे। सुनया है सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनया है धरत तबल आकाश, सुनया है दीप लोआ पाताल, सुनया है पोहे न सकै काल, नानक भगता सदा मिंगास, सुनया है दुख पाप का नास, सुनया है ईसर ब्रह्माइंद, सुनया है मुख साला हनुमंद, सुनया है जोग जुगत तन भेद, सुनया है साहत सिमरत वेद, नानक भगता सदा विंगास, सुनया है दुख पाप का नास, सुनया है सत संतोष ज्ञान, सुनया है अड़सठ का स्नान, सुनया

विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन है सुरत होवे मन बुद्ध मन है सगल पवन की सुध

मन कोय मने मार्ग ठाग न पाए मने पास्यों पर गट जाए मने मग न चढ़े पंथ मने धर्म सेती सन बंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय मने पावे मुख द्वार मने परवारे साधार मने तरे तारे गुर सिख मने नानक पवे न पिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगह मान पंचे सुह है दर राजान।

ने उपाई कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पात साहो साहा पात साहिब नानक रहन रुजाई मुंदा संतोख सरम पात च होली ध्यान की कर

पै जाए। धर्म खंड काय हो धर्म, ज्ञान खंड काख हो कर्म। केते पवन पाणी वसंतर, केते कान महेश, केते भर में काढ़त घड़िय रू।

नाथ केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते रतन समुंद केति अखानी केति अबानी केते पाद नरेंद केति असुरति सेवक केते नानके अंत नायंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथ नाद विनोद कोड अनंद

महंते नमस्तात रागे नमस्त सुहागे नमो सर्वसुखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो पोग पोगे नमो सर्वद्याले नमो सर्वपाले चाचरी शांतव प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अपे अपू है

है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, पजहंग प्रयास छंद। नमो सर्वमाने समह तीन दाने, नमो देव देवे पेखी पेहवे, नमो काल काले, नमो सर्वपाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पहुणे, अनंगी अनाथे निरसंगी प्रमाथे, नमो पहन पहने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पहन पहने,

माता दयालं अशेदीयं भेदीयं नामं कामं सुभासतो पराजी सुभासतस्तामं तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपिहित हैं अपिहे हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं पेस हैं पजांग प्रयास छंद गादे बादे नंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने सुभासतीं दाने नवाह तवंग नाथे नवाह तवंग प्रमाथे नवाह तवंग गंजे नवाह तवंग अपंजे नवाह तवंग अकाले नवाह तवंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वपोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृश्यं नमो सर्वकृत्सं

प्रसाद। अमृत कर में अमर धर में अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग लाह करमंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुआल शांत वय प्रसाद। आद रूप अनाद मुहूर्त अजौन पुरखे अपार सर्वमान त्रिमान देव पेहवा देवदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कौपन काल जतर तत्र बिहार ही अवधूत रूप प्रसाद।

पूर्ण पुरुख अपार सर्व विश्व रतिय स्वयं पव गण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरुख आदेश धर्म ताम सो परम रहत अपभूत अलाख्य अपहिस अंग राग नरंग जाग जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम आप रूपे अमीक अनुस्त देख पुरुखे वधूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूपे असूत अंगहीन अपांग नाथ मेक पुरुखे अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व गौव्रत पार सर्व गंता सर्व हंता सर्व तेन पेख सर्व साह तरना जानही जह रूप रंगर रेख परम भेद पुराण जाग कह नेत पाखित नित गुण सिमृत प्राण सात्र नावहि बहुचित मद पर शांत वय प्रसाद

खांडयालिस्य कर्मदृश्ये धर्म सर्वापरणाढ्य अंडडबाढ्य चाचरी शांतवय प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निर्नामे कामे पजांग प्रयाशंद चतर चक्र कर्ता चतर चक्र हर्ता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मान्याय चतर चक्र दान्याय चा त्रिशंद

अर्थी से अदि से अदृश्य अकृश्य भगवती शांत व प्रसाद कहते के अशद देशे के अपिहज पिहसे के अगांज कर में के अपांज पर में के अपिहज लोक कह के अदित शोक कह के अतभूत वर्ण है के विभूत कर्ण हे राजं प्रभा है के धर्मं तुझा है के अशोक वर्ण है के सर्वा अपर्ण के जगतं कृति है के शत्रं क्षत्रि है के ब्रह्मं स्वरूप है के अनुपो अनूप है के आद अदेव है के आवय अपेव है के चितरंग विहीन है के अधीन है

बत्र पोख है, केसर बत्र तरान है, केसर बत्र परान है, केसर बत्र देश है, केसर बत्र पिस है, केसर बत्र मान्य सदैव प्रधान्य, केसर बत्र जाप्या, केसर बत्र थाप्या, केसर बत्र पान है, केसर बत्र मान है, केसर बत्र इंद्राय, केसर बत्र चंद्राय, के सर्वं कलिम है, के परमं फहीम है, के आकल अलाम है, के साहेब कलाम है, के हुसनल वजू है, तमामर रुजू है, हमें सल सलाम है।

त्रिनामय त्रिपंगी त्रिकामय त्रिभग त्रिभादे गंजे गादे शुभंग सर्वभाग्य सो सर्वानुरागय त्रिपुगत स्वरूप है छज है अछूत है के नरकं प्रनाश है पृथ्वी प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है परजुगत अनूप है निरुक्त सदा है विपुक्त प्रभा है अनुगत स्वरूप है परजुगत अनूप है चाचरी छंद

है, अपगत है, विरक्त है, नाश है, प्रकाश है, निचिंत है, सुनित है, अलेख है, अदेख है, अलेख है, अपेख है, अटाह है, अगाह है, असंभ है, अगम है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चर प्रशांत व प्रसाद,

सदैव प्रसाद। नमो नर्कनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते।

प्रभुत है, के अमितो पासा है, के आतम प्रभा है, के अजलंग नाग है, के अमितो पांग है, मद प्रशांत वे प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण मुदाम हर बर गंज हर नर पर भंज अन गण प्रणाम मुन मन सलाम हर नर खंड बर नर मंड अन भव नाश मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मदाम अन सिंह अंग आसने अपंग उपमा पार गत मिति उदार जल थल अमान देश वैसे अभंड

है, जगते सुर है, परमेश्वर है, काल कारण है, सर्वे उबारण है, सचित के तरण है, जाग के करण है, मन मान्य है, जग ध्यान्य है, सर्वं पर है, सर्वं कर है, सर्वपाश्य है, सर्वनाश्य है, करुणा कर है, विश्वम्पर है, सर्वेश्वर है, जगते सुर है, ब्रह्मंड से है, खल खंड से है, पर ते पर है, करुणा कर है, अजपा जप है, अथपा थप है, अकृताकृत है, मृता मृत है, अमृता मृत है, करुणाकृत है, अकृताकृत है, तरणी तृत है, मतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृताकृत है, मृता मृत है, अजबा कृत है, अमृता मृत है, नार नायक है, खल कायक है, विश्वम्पर है, करुणालय है, निरिप नायक है, सर्व पायक है, पाव पंजन है, अर्गंजन है, रिप तापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कार है, हर्ता हर है, परमात्म है, सर्व आत्म है, आत्म वास है, जास के जास है, प्रजांग प्रयाशंद, नमो सूर्य सूर्य, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे,

अटाह अनाथे ब्रह्माथे अजोनी मोनी नरांगे नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मं अपर्मं अगंजे लेखे पजांग प्रयाशंद संबाहतर प्रणामे संबाहतर प्रणासे अगंजल नामे संबाहतोलने वासे निरकामं विपूते संबाहतल स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सुधर्मं विपूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी क्रीमल कलिंदा संबाहतोलने वासी अजय विभूते गजय गनीमे हरियं करियं करीमहि मे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं सुभं सर्वदा सर्वजुगते दो कालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदांग संगे अपंगं विभुगते दो कालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदांग संगे अपंगं विभुगते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाहि दसवीं तवै प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समूह सिद्धान के देख प्रयोग कर जोग जति के सूर सुरार्दन सुध

जग श्री भगवान को भेद न पायो। को बतान कहो पूजित है पास, को मृतान कहो पूजन दहायो।

स्वरूप स्वयं पव अवरछा मेरी तुम करो सिख उबारिया सिख संग्रह दुहत जिते उठवती उत्पाता सकल मलेश करो रन काता जे अज तुह तब सरणी परे तिनके दुहत दुहत हो मरे।

आवहे। एहो सोहिला सबद सुहावा, सबदो सुहावा सदा सोहिला, सतगुरु सुनाया एहो तिन कै मन वसया, जिन तुर हो लिखिया आया। एक फिरे कनेरे करहे गल्ला, गल्ली किनै न पाया, कहे नानक सबद सुहिला सतगुरु सुनाया। पवित होए से जन जिनी हर त्याया, हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया। पवित माता पिता कुटुंब सहित स्यों, पवित संगत सबाइया। कह दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया, कहे नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया।

जग में आया। जिन हर तेरा रतन रतिया सो हर मन नवसाया, गुर प्रसादी हर मन वसया, पूर्व लिखिया पाया। कहे नानक हो शरीर परवान हुआ, जिन सत गुर स्यों चित लाया।

गुर बाणी कह सेवक जन मन प्रतख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचारसी

ज्ञान शब्द मन वसाए ए मत तेरी थिर रह तां परम विचों जाए रहाओ हर चरण हृदय वसाए तू किल विख होवै है नास पंच भू आत्मा वस करै ता तीर्थ करै निवास मनमुख एह मन मुगद है सोजी किछु ना पाए हर का नाम ना बुझई अंत गया पछताए ये मन कांशी सब तीरथ सिमरत सतगुर दिया बुझाए अठ सठ तीरथ तिस संग रहै

धर्म दृढ़ो हर नाम त्यावो सिमरत नाम दृढ़ाया। सत गुर गुरपुरा आराधो सब किल विख

निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी संत जना वड भागी पाया हर कथिए अकथ कहानी हृदय हर हर हर धुन उप

पदे एक ओंकार सदगुर प्रसाद एक पिता एक हम बारक तू मेरा गुरहाई सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी हर दर्शन देहो दिखाई सुन मीता धूरी कौ बल जाई एहो मन तेरा भाई रहाओ पाव मलोवा मल मल धोवा एहो मन तै कू देसा सुन मीता हौ तेरी शरणाई आया प्रभ मिलो देहो उपदेसा मान न कीजै सरण परिजै करै सो भला मनाइयै सुन मीता जियो पिंड सब तन हर पीजै क्यों दर्शन हर जियो पाइयै भायो अनुग्रहो प्रसाद संतन कै हर नामा है मीठा जन नानक कौ गुर कृपा धारी सब अकुल निरंजन डीठा भायो अनुग्रहो प्रसाद संतन कै हर नामा है मीठा जन नानक कौ गुर कृपा धारी सब अकुल निरंजन।